0: खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: He said every district

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना सांझ के शो सिटी लाइट्स में हर रोज शाम 5 बजे।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు, అనంతరం ఇంగ్లీష్లో వార్తలు ఢిల్లీ నుంచి రిలే వింటారు. ఇంతటితో ఈనాటి వినిపించే ట్రాక్లకి సైనింగ్ అప్ చెప్పేసేద్దాం.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर. भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं. नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है.
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे.
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. नियंत्रण कक्ष से +9111238817 पर संपर्क किया जा सकता है. काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779816317 नंबर जारी किए हैं. इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है. नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए. तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं. नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।